0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
0: पवन करे शोर,
1: हाँ

0: पर मलाइक चान सहवा
1: दर दुर्गावा
0: अधि मलाइक चान सहवा
1: दर दुर्गावा
0: अग मलाइक चान सहवा।

0: दम खावा
1: आधी मलाइक चानस हवा
0: जरा दम खावा
1: पर मलाइक चानस हवा
0: जरा दम खावा
1: अग मलाइक चानस हा हा हा हवा।

0: आग पूरे ही तरह जातो मिघरा
1: अम्बन का जाऊ नम देवा माछा नाम देवा
0: मग मलाय के चानस हवा
1: नक्को नाम देवा
0: आग थोड़ा सा चानस हवा
1: पूरे नाम देवा
0: मलाही वड़ा चानस हवा
1: देत नाम देवा
0: आता सगळा चानस हवा
1: या हो नाम देवा
0: आता सगळा चानस हवा
1: या हो नाम

धाम हिलता इश्कहता एटम वाम गंगु तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्कहता एटम

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं।

0: actually.
1: Hey, thank you kiss ke liye. I hope you're not too sleepy.
0: मुझे रात को नींद नहीं आती.
1: Okay.
0: Born insomniac. Sleeping pills bina. So not impossible. But really, Akshay, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी.
1: अच्छा, अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा?
0: बिल्कुल नहीं.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चल ले तो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगले,
1: फिर सुनो तो आगे हमारे।

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं।
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। यहां आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3

0: यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: कह दूं तुम्हें
1: हाँ
0: या चुप रहूं
1: ना,
0: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है।